जोजोले पाथा नेपाल सम्बन्ध चिन्छ सौ पी खुद दिल्ला थुपुनी थु रेडियो नेपालको हानेना दिशा जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सुनसरी जुगु झाँका यता कया दुःख पङ्का दिशे सीमा छ्याच यता न्याय पीडित यता क्षतिपूर्ति ओ लावा पिण्ड थुई कानुनी कथा कारवाही यागु बचाउ पङ्का दिगुदु। प्रधानमन्त्री शाह सामाजिक सञ्जाल पाखे झाँका जुया सिउमा यता विचाहाका दिशे खापा जुपिन्ता थथ्य स्वास्थ्य लाभ या कामना देशना दिगुदु वेक्ल झाँका लिचो लागु छेज यता महसुस याइगु याना न्याय ओ क्षतिपूर्ति लल ह्या त सरकार प्रतिबद्ध जुयागु बचाउन पापङ्का दिगुदु। प्रधानमन्त्री शाह सुरक्षा कर्मी या गोली कया मनोसिगु खापा जुगु गम्भीर खजुगु कनादि सेन्थु विशेष अनुसन्धान हेना चौगु ओ दोषी दथी कानुन कथन कारवाही जुइगु धुवाथुका दिला सरकार फुक झाँकाया आपल समीक्षा याना चौगु ओथो झाँका लिस मका के त मागु कोछिना ओ भिङ्केगु पला न्याका चनागु धया दिगुदु। वेक्ल मनु तेता उत्तेजना आक्रोश बदलाया भाव तोता संयम कथन ह्यज्याता सामाजिक सद्भाव आपसी विश्वास व सहिष्णुता लेङ्का तेता नापा इनाफेना दिगुदु। मनु तेगु फुक्कन सोया त धङ्गु धर्म मनु माकिगु जुगु नेथना दिसे प्रधानमन्त्री धया दिगुदु। सरकार या फुक्कन छिबे नापाङ्गु धर्म थमा मनु तेता सुरक्षित कथा तया कसुरदार या त कारवाही या से पीडित या त न्याय व क्षतिपूर्ति बि गुख सरकार अन्थो फुक ज्या याक्न यागु याना चङ्गुदु। सरकार या नापाङ्गु भाला मनुतेगु सुरक्षा सुनिश्चित यागु पीडित या त न्याय बि गु व दोषी या त कानुनी दायरा हेगु नेथना दिसे प्रधानमन्त्री थो भाला पुङ्के त सरकार पूर्ण कथा प्रतिबद्ध जुयागु लिसकया दिगुदु। सुनसरिया देवानगन्जे निमा निगु पुचदथी बोलङ्गु कचौमा तस्वे धुङ्कानी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरिया सुनसरी जिल्ला छिगु स्थानीय तहस अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी आगुदु। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अर्याल पिथना दिगु आदेश कथम हिगो सनिल गुता इलनिसी मेगु आदेश मयबुले तक्क थो कर्फ्यु छ गु खसा थो कर्फ्यु या नीति स्थानीय प्रशासन एन 2028 दफा छ कथम पिथनागु प्रशासन धागुदु कर्फ्यु छ गु लागा सुनो मनुयाता न्यासी मजुइता ममु नेता जुलुस प्रदर्शन मयाता सभा बैठक व मेगु सार्वजनिक गतिविधि मयाता नापा निषेध यागुदु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सभापति रवि लामिछाने सुनसरी झाँका नापा या विशेषण सल याता सता दिगु सर्वदलीय बैठक आजना सङ्गु दुई सिंहदरबार या लेखा समिति या बैठक कक्ष हेना सङ्गु बैठके संसदीय दुगु दल नापा उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर सिके राउत मधेस केन्द्रित दल तेता बोती कायता इनाफ याना तगु रासोपाया महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य जानकारी बियादिगु खसा महामन्त्री आचार्य यखुए संवेदनशील व दुखन जागु झाँका व थुकिन दुकागु असहज अवस्था यता सामाजिक सञ्जाल कथा भुलाना चोङ्गु थो द्वेष न्यूनीकरण याता व सद्भाव व शान्ति सुरक्षा लेङ्का त्यता प्रशासनिक कुत याना त्यता राजनीतिक कथन सामूहिक हसना व इनाप मागु लि सहल गोसा गोयागु थागुदु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा नेपाली समाज बहुलवादी संस्कृति थथेव एकता सामाजिक सद्भाव सिङ्कीगु याना गतिविधि मया त सकल मनु दथी नागरिक झ्यालुवा व स्वपुतैपी पक्ष दथी इनाफ यागुदु। पार्टी सभापति रवि लामी छाने मिग पिथनादिको विज्ञप्तिसँग सुनसरी नापा पूर्वी जिल्ला जुगु झाका दुकागु लकस आपल ध्यान कोसागु कना दिसे थुजाको उत्तेजना अफवाय लिने मजुसे आपल संयमता कगायता इनाप्याना दिगु ख विज्ञप्तिसँग परिस्थिति सामान्यकरण याता शान्ति सुरक्षा लेङ्का त्यता ओ झाँका या निष्पक्ष दुवाले त लावा पिन्ता छाक कानुनी कारवाही याता सरकार या ध्यान वङ्गु नापा दया त अगुदु नापा रासोपा विज्ञप्ति पाखे पीडित या त न्याय मा कथा या क्षतिपूर्ति ओ खापा जुपिन्ता ढेवा मायाक वास यागु बचा नापा पङ्कगुदु। सभामुख ढोल प्रसाद अर्याल प्रतिनिधि सभा या थिथि राजनैतिक दल या मुख्य सचेतक को सचेतक पी नापा सदन या त लिचो लाइको कथा व्यवस्थित व मर्यादित कथन याके त मिग सहल व्याका दिगुदु। सहल स कने जुइगु प्रतिनिधि सभा बैठक या त लिचो लाइको कथ लिचो पिकागु सरकारसँग माको बिजनेस
लल ह्यागु व सदनया गरिमा मर्यादा लिङ्का तेगु विशेष विचार विमर्श जुगु धागुदु संघीय संसद मातहत्या निगु संसदीय समिति बैठक ठाउँ चुने ट्याङ्गुदु संघीयता सबलीकरण व राष्ट्रिय सरकार समिति हो संसदीय सुनवाई समिति बैठक चुनेको कोछिगु ख संघीय संसद सचिवालय कथा संसदीय सुनवाई समिति बैठक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीति प्रस्तावित मानबहादुर कार्की विरुद्ध उजुरी बिगु उजुरी कर्ता नपा सल यागु ज्याजो दुसा अथेना प्रमुख आयुक्त प्रस्तावित कार्की यथा समिति नापा भुना सुनवाई या त्यङ्गुदु समिति बैठक सुतेसिया झिन्छता एजुया झिङ्यागु मिनेटे चोनी समिति मङ्गलबार आयुक्त प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्ले व डाक्टर राजे सुब्बा यता बोना सुनायागु दूत अथियाना संघीयता सबलीकरण व राष्ट्रिय सरकार समिति बैठके आर्थिक दन 2083-84 दक्षिया ज्या धलया विशेषण सल यागु ज्या धलदु समिति बैठक सुतेसिया झिन्छता एलिए चोनीगु गोसादु संघीय सरकार स्थानीय तह यता खाद्य निरीक्षक व्यवस्था याना खाद्य स्वच्छता गुणस्तर या प्रभावकारी नियमन यता इनाप्यागुदु खाद्य स्वच्छता ओ गुणस्तर एन 2081 स्थानीय तहसँग खाद्य निरीक्षक नियुक्ति याना थगु लागा दुने खाद्य बजार या नियमित अनुगमन निरीक्षण व नियमन यागु व्यवस्था यागुदु स्वास्थ्य मन्त्रालय या इनाफ कथा भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मङ्गलबार फुक स्थानीय तह यता खाद्य स्वच्छता गुणस्तर एन परिपत्र यागु ख परिपत्रसँग होटल रेस्टुरेन्ट समिना गृह क्यान्टिन भोजना लगायत भोजनालय नापा खाद्य सेवा ललहागु व्यवसाय पिस स्थानीय तहसँग अनुमति कास जक्क याके दैगु व्यवस्था प्रभावकारी कथन छेले त इनाप्याना तगुदु स्थानीय तहसँग थगु लागा याका तगु खाद्य व्यवसाय नियमित अनुगमन निरीक्षण व मागु कथन व्यवस्था या मालिगु जुगुदु भारतीय उत्तराखण्ड प्रदेश पिथौरागढ जिल्ला दुगु धौली गङ्गा जलविद्युत परियोजना बाँच च्याकी गु लि महाकाली तटीय लागाया मनोतेत सतर्कता कघाता इनाप्यागुदु जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाम हिगछगु सुचमा पिथना अनया एनएसपिसी लिमिटेड धौली गङ्गा पावर स्टेसन दार्चुला थौ सुथे खुता इल निसे कने खुता इ तक्क सिल्ड सफाई या नीति बाँचाकी गुली सतर्कता क घाता इनाप्यागु ख थोएदती जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी न महाकाली खुसी तटीय लागाचना होया चोपी जलाखला पिन्त सतर्कता क घाता इनाप्यागु ख सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजमणि निरौला छगु विज्ञप्ति पिथना मागु कथन सतर्कता क घाता इनाप्याना दिगु ख थौ विश्व धुँ दिवस दहपतिक जुलाई लाया 29 धुँ दिवस हनावया चङ्गुदु सन् 2030 रुसिया सेन्ट पिटर्सबर्ग जुगु धुँ शिखर सम्मेलन या घोषणा पान्थो दिवस हनावया चङ्गुदु तत्कालीन इले धुँया लिया आपल मोजुया वङ्गु इ या त दिकेता थुक्या प्राकृतिक वासस्थल संरक्षण यागु आजौँ थो दिवस हनावया चङ्गु ख नेपाली पेन्द पतिक धुँ ल्या खाइगु याना चङ्गु दुस सन् 2022 या धुँ गणना कथन देशे धुँया ल्या सोसव ने यामा दुसा सन् 2022 या ल्या कथन फुकन सिबे उप धुँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सचिव निचामा वया लियु बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सचिव निङ्यामा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पी छमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुई छमा व बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज निङ्यामा धुँ दुगु मन्त्रालय तथ्याङ्क जानकारी बिगुदु थौ आषाढ शुक्ल पूर्णिमा दिन खिङ्गुली ज पाखे हुनीगु लपु ह्याके त मतिना ललाइमा गुरु या त हना देछासे गुनी गुरु पूर्णिमा नखाना चङ्गुदु गु या अर्थ खिमुगु रु या अर्थ ज धका अर्थ बिहा तगुदु ज्ञानरूपी ज अज्ञानरूपी अन्धकार या त नास याईमा मुनु यता गुरु धाइगु तन्त्र शास्त्र व धर्मशास्त्र या सफी नेथना तगु दु शास्त्रे गायत्री दीक्षा वेद मन्त्र निङ्किगु शिक्षा बिमा गुरु या महिमा नेथना तगुदु खिङ्गुली या त नास या थे जीवने ज ललहाइमा मनु या त गुरु धाई गुरु या त झिगु शास्त्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वर या कथा नापा हना देशना त गुदु मा अबु या थे गुरु नन ड्य कथा हना आचार्य देव भव धया त गुदु गुरु पूर्णिमा लसत्या
दिन ठीठी विद्यालय नापा संघ संस्था तेसा ज्याजो याता शिक्षा दीक्षा बीमा गुरु याता श्रद्धा भाव हना देसना तगु हना देसाई गुयाना चङ्गु दु थौ वेद याता ऋग्वेद यजुवेद सामवेद अर्थवेद याना पेङ्गु बोखे बो थला थुकिया अर्थ थुके त सरल संस्कृत भाषा झिन्च्यागु पुराण झिन्च्यागु उपपुराण या रचना याना दिमा देव व्यास या लुमन्ती व्यास जयन्ती नहना सङ्गुदु असार शुक्ल पूर्णिमा या दि वेद व्यास जन्म जोगले थो दिन व्यास जयन्ती कथा हना वया चङ्गु ख ज्यापु दिवस ज्यापु संस्कृति विकास कोषसँग गुरु पूजा लसता ये महानगरपालिका या खुइ सुङ्गु त्वा गुठिया गुरु पिन्ता थौ हना देसना चङ्गुदु ये महानगरपालिका या कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलङ गुरु पिन्ता हनि अनादिगु ख थो ज्याजुले नि सुङ्गु राष्ट्रिय ज्यापु दिवस हनेता पा वेगु ज्याजो क्षेत्रपाटी ज्याकु पार्टी पालेसे जुया चङ्गु मु छ्याञ्चे रमेश महर्जना जानकारी ब्यादिगु ख प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद या ज्याकु सुनसरिया देवानगञ्ज गाउँपालिका या कप्तान गन्जे साउन 10 गते जुगु झाका मधुपति बिचा ह्याका घापा चुपिन्ता भि उसाया मनन्तुना चोङ्गु दु ज्याकु या प्रवक्ता हेमराज अर्याला मिगछगु विज्ञप्ति पिथना घापा जुपिनी गुद्दा मयाको वास यागु नेनु धुने झाका या त दुवाला प्रतिवेदन ल ल्यागु छगु समिति निसुने गुधागु दु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा या कर्णाली प्रदेश या दल या नेता मङ्गल बहादुर साई कर्णाली प्रदेश या मुख्यमन्त्री नियुक्त जुयादिगुदु प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी नेपाल संविधान कथा साई यता मिग मुख्यमन्त्री नियुक्त याना दिगु ख थो न्ह नेकपा एमाले समर्थन कर्णाली प्रदेश प्रमुख ज्याकुई नेता साही मुख्यमन्त्री पदे दावी याना दिगु ख पीमा दुज दुगु कर्णाली नेकपा या झिम्पेमा नेकपा एमाले झिमा प्रदेश सभा दुज दु आदेशम पिने अबुक जापानिया क्युसु टाफुई खुगु फुटी च्यागु म्याग्ना चुटिया शक्तिशाली भुख्या बोगु दु भुख्या बोया छगु सपिङ मले आपला मनु त तकेना चोङ्गु दु मल्या निगु तला दुगुली आपला मनु त लाना चोङ्गु थागु दु सुईमा कर्मचारी स्वापु त्वा धगु न मल जानकारी बिगु दु सा भुख्या बोया म त मगु सडकको ताना पाङ्सेङ्कु दु स्पेन राजधानी म्याड्रिड या पश्चिमी लागा नेनाउना चङ्गु मियाता भच्चा स्याता ता लागु गृहमन्त्री फर्नान्डो ग्रान्डे मालास कहाँ धैदिगुदु स्पेन सरकार वङ्गुवाले देशे दक्ले तधङ्गु मि नगुले राष्ट्रिय मि राष्ट्रिय आपतकाल या घोषणा याना दिगु ख मि फ्रान्स इटाली तक नेना वङ्गु धागुदु फ्रान्से सोङ्गु लाख मनु त्यता मेथा याङ्कगु दु आ मौसम या जानकारी थौदे या हिमाली लागा वा नापा चप्पु कुहाँ वैगु पहाडी लागा नङ्याना वा वैगु धागुदु कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम या पहाडी लागा छगु निगु थासे सुदूरपश्चिम या तराई लागा छगु निगु थासे आप्लङ वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु मिग सोनिगोले सुइगु फुटी छगु डिग्री सेल्सियस या दति क्वाज लुगु खसा थ सोनिगोले सुथेसिया याता इजु या झिन्च्यागु मिनेटे लुगु सूर्य द सनिलय नेता इजु या छगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिस सुभा

निरामी भाजमेजपी थौ रेडियो नेपाले नेपाल भाषी ज्याजो जीवन दबु जुनाजी ज्याजो न्याकम उपेश महजन वयात्नाले थौ प्राविधिक रूप देवकी भण्डारीजी त ग्वाली नाचनादीको दुले थौ जिउ स्टोरले अटिजियम केयर व फिजियोथेरापिस्ट ज्या इना दिमा डाक्टर सुरेन्द्र ब्रजाचार्य झ्यादीको दु लस्कुस दु हजुर निना भाजमेजपी सुरेन्द्र ब्रजाचार्य डाक्टर साहब लिसे थौ अटिजम या विशेष वेक लिसे निनकनी यागुजी अले वेक यु बच्चा आगो थन मसी काजको बि वेक चाहिँ कीर्तिपुर दस पाहे झ्यादी म खदास वेक अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी या निर्देशक कीर्तिपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या कन्सल्टेन्ट फिजियोथेरापिस्ट लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 या डिस्ट्रिक्ट डायबिटिज अवेरनेस चेयरपर्सन लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ पद्म काष्ठपुर या चार्टर प्रेसिडेन्ट कीर्तिपुर सामुदायिक सेवा केन्द्र या केन्द्रीय दुज काठमाडौँ विश्वविद्यालय या भिजिटिङ फ्याकल्टी मेम्बर अर्थात् वेकमा चाहिँ स्कुल अफ एजुकेसन नै समावेशी एजुकेसन विशेष वेकमा चाहिँ अनुभव बङ्कादी अहिले वेक गतकी जनस्वास्थ्यले एमपिएले नौ वेकमा चाहिँ मास्टर सिनादीको दुधासा ग्लोबल लाइन कोर्स अन डायबिटिज ए डेनमार्क नौ वेकमा मास्टर सिनादीको दु तासी बाजमेजमी वेकलिसे अटिजम या विशेष यागुन ह दक्ले नापा छपो नेपाल भाषामा

काफी नुकसान भी पहुंचाया है। हरिनगर गांव पालिका के सदर गफार अंसारी ने भी इस नागहानी वाकये को हल करने के लिए तासुबाना रवैये के बजाय तहम्मुल इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि वो माशरे में हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए पहल करें, क्योंकि तनाजुआत, तोड़फोड़ और आतिशजनी जैसी सरगर्मियों से किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। सुनसरी के देवानगंज गांवपालिका में पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक बहस के लिए आज मुनाक़िदा कुल जमाती इजलास में समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने एक ही मुकाम पर खड़े होने पर इत्तेफाक किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सदर रवि लामिछाने की कॉल पर आज सिंहदरबार में मुनाक़िदा कुल जमाती इजलास के बाद सदर लामिछाने ने इस बात पर जोर दिया कि सियासी मैदान में हम सब मुख्तलिफ होने के बावजूद समाजी हम आहंगी में हम सबों को मुत्तहिद होना चाहिए। मुल्क में किसी भी तरह के फ़िरका वाराना तशद्दुद को रोकने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर जोर देते हुए सदर लामिछाने ने कहा कि हुकूमत अपनी तरफ से काम कर रही है और जब ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं तो तमाम सियासी पार्टियों का एक ही जगह पर खड़े होना ये एक रिवायत रही है। नेपाली कांग्रेस के सदर गगन थापा ने कहा कि उनकी पार्टी मुल्क में फूट पड़ने वाले फ़िरका वाराना तशद्दुद को ख़त्म करने की गर्ज से हुकूमत का साथ देने के लिए पुराज़्म है, और फिर हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि हुकूमत इस वक्त अपने जमूद में महदूद है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के सेक्रेटरी जनरल शंकर पोखरेल ने इस बात पर जोर दिया कि शहरियों की सलामती की जिम्मेदारी सबकी मुश्तरका होने की वजह से मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सदर राजेंद्र लिंगदेन ने हुकूमत से अपील की है कि वो मजहबी हसासियत और सूरत हाल की संगीनी को समझे, क्योंकि रियासत की मुसलसल बेहिसी की वजह से सुनसरी का वाकया पेश आया है। इजलास में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के कोऑर्डिनेटर और साबिक वजीर आजम पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि हसास वक्त में तमाम सियासी पार्टियों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और समाजी हम आहंगी और बाहमी एतमाद को बरकरार रखने के लिए पहल भी करनी चाहिए। आज के कुल जमाती इजलास में रहनुमा महंत ठाकुर, सी के राउत, श्रम संस्कृति पार्टी के आर एन राय ने भी शिरकत की। कुल जमाती इजलास के बाद अहम सियासी पार्टियों के दस्तखत शुदा मुश्तरका अपील को मंजर आम भी किया गया। वज़ीर मालियात डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने सनअतकारों से अपील की है कि वो बेफिक्र होकर अपनी सरमायाकारी को बढ़ाएं। वजारत की जानिब से शुरू किए गए बजट के नफाज से मुतालिक मुबाहिसे के पहले सेशन में हिस्सा लेने वाले 3 दर्जन से जायद सनअतकारों और कारोबारी अफराद से वज़ीर मालियात वागले ने कहा कि हुकूमत कारोबारी अफराद के हक़ में साजगार माहौल पैदा करने के लिए पुराज़्म है। बजट में निजी शोबे को सरमायाकारी के लिए खुले तौर पर आगे बढ़ने के लिए खातिरख्वाह इस्लाहात किए जाने की जानकारी देते हुए वज़ीर मालियात ने सनअतकारों से अपील की कि अगर कोई मजीद पॉलिसी से मुतालिक मुश्किलात को हल करने की ज़रूरत हो तो वो वाज़ह तौर पर बताएं। गुज़श्ता मंगल को 5 घंटे की बहस के दौरान उन्होंने सनअतकारों के मसाइल को सुने थे। वज़ीर इत्तिलाआत व मुवासिलात डॉक्टर बिक्रम तिमिर सिन्हा ने नेपाल टेलीकॉम की सर्विस तक रसाई और मेयारी इस्लाहात के लिए रूनमा मसाइल को फौरी तौर पर हल करने और टेलीकॉम के तमाम टावरों में काबिल एतमाद पावर सिस्टम नसब करने, मुतालिका वहदतों के दरमियान मुअस्सर तालमेल की हिदायत की है। आज वजारत मुवासिलात में मुनाक़िदा एक बैन वहदती बहस में नेपाल टेलीकॉम के बेस ट्रांसीवर स्टेशन, PTS टावर और दीगर टेलीकम्युनिकेशन के आलात को काबिल एतमाद, बिजली की फराहमी की किल्लत के बास मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टेलीफोन और इंटरनेट की खिदमात में दरपेश मसाइल का तफसीली से जायज़ा लिया गया। बहस के प्रोग्राम में वज़ीर मुवासलात डॉक्टर तिमिल सिन्हा ने कहा कि शहरियों को मेयारी और काबिल एतमाद टेलीकम्युनिकेशन की खिदमात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है,
اور انہوں نے صرف مسائل کی نشاندہی تک محدود نہیں بلکہ نتیجہ خیز

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झा सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। असार शुक्ल पूर्णिमाके दिन आय गायत्री दीक्षा वेद मन्त्र सुनावावला आ शिक्षा देवला गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट क गुरु पूर्णिमा पर्व मनायल जा रहल अछि। गु के अर्थ अन्धकार आ रू के अर्थ प्रकाश बुझित छे। ज्ञान रूपी प्रकाश सँ अज्ञान रूपी अंधकार के नाश कराबे वाला व्यक्ति के गुरु कहल जाइत अछि आ तंत्र शास्त्र धर्म शास्त्र के पुस्तक में सेहो यह उल्लेख कयल गेल अछि। अंधकार के नाश कऽ जीवन में इजोत फैलाबे वाला व्यक्ति के गुरु कहल जाइत अछि। एहि में गुरु के हमर सबके शास्त्र ब्रह्मा विष्णु आ महेश्वर के रूप में सेहो मान्य अछि। अखाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जन्म लेला सँ एहि दिन व्यास जयंती सेहो मनाओल जाइत अछि। एहि अवसर पर आइ देशभर के विभिन्न गुरुकुल शिक्षालय एवं संघ संस्था सब गुरु पूर्णिमा पर्व सेहो मनाबैत अछि। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव सुनसरी में भेल घटना प्रति चिंता व्यक्त करैत शांत आ सद्भाव के लेल अपील कयलनि अछि। ओ एक संदेश मार्फत घटना में मृत्यु भेल नागरिक प्रति दुख व्यक्त करैत शोक संतप्त परिवारजन में संवेदना प्रकट कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति यादव घायल नागरिक तथा सुरक्षाकर्मी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना करैत हुनका सबके उपचार प्रभावकारी रूप में हुए अपेक्षा कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति यादव कोनो समस्या समाधान के मार्ग शांतिपूर्ण संवाद भेल चर्च करैत अपन मांग संयमित ढंग से प्रस्तुत करबाक लेल सब पक्ष जिम्मेवारी पूर्वक प्रस्तुत हेबाक लेल अनुरोध कयलनि अछि। ओ स्थानीय प्रशासन धार्मिक अगुआ तथा नागरिक समाज आपसी समन्वय कऽ कऽ विश्वास के वातावरण निर्माण कऽ संबंधित पक्ष के आग्रह कयलनि अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह सुनसर में भेल घटना प्रति दुख व्यक्त करैत मृतक के परिवार के न्याय पीड़ित के क्षतिपूर्ति आ दोषी के कानून बमोजिम कार्रवाई कायल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। प्रधानमंत्री शाह सामाजिक संजाल मार्फत घटना में मृत्यु भेल सबके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत घायल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना कयलनि अछि। ओ घटना से प्रभावित परिवार के पीड़ा सरकार महसूस केने बतबैत न्याय क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबे सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। प्रधानमंत्री सुरक्षाकर्मी के गोली लागि कऽ नागरिक के जान जायब आ घायल होयब गंभीर विषय भेल बतबैत एहि संबंध में अनुसंधान शुरू भऽ चुकल आ दोषी पर कानून हिसाबे कार्रवाई हेबाक स्पष्ट कयलनि। ओ नागरिक के उत्तेजना आक्रोश आ बदला के भावना त्याग कऽ संयम अपनाबा आग्रह करैत सामाजिक सद्भाव आपसी विश्वास आ सहिष्णुता कायम राखा सबके आह्वान कयलनि अछि। सरकार के पहल दायित्व नागरिक के सुरक्षा सुनिश्चित करब पीड़ित के न्याय दियाब आ दोषी के कानूनी दायरा में आनब रहल चर्च करैत प्रधानमंत्री ई दायित्व पूरा करब सरकार पूर्ण रूप में प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। सुनसरी में किछु दिन पहले ही भेल घटना पश्चात सामाजिक सद्भाव में पड़ि सकबाक संभावित असर के मद्देनजर करैत जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के पहल में जनकपुर धाम में सर्वपक्षीय सामाजिक सद्भाव बैठक सम्पन्न भेल अछि। बैठक सँ धनुषा में कायम रहैताल सामाजिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव के आर सुदृढ़ बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करैत बहुभाषिक बहुजातीय बहुधार्मिक तथा सहिष्णु नेपाली समाज के राष्ट्रीय पहचान बचेबा लेल सब पक्ष संयुक्त रूप में भूमिका निर्वाह करबाक सहमति भेल अछि। बैठक सँ सामाजिक सद्भाव में समस्या उत्पन्न होबय नहि देबा विभिन्न धर्म तथा समुदाय के अगुआ नागरिक समाज बुद्धिजीवी राजनीतिक दल संघ संस्था तथा स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि निरंतर समन्वय सहकार्य करबाक निर्णय कलक अछि। संगे जिला तथा सदर मुकाम के कोनो प्रकार के अवांछित गतिविधि होबय नहि देबा लेल सरकार वाला पक्ष सक्रिय भूमिका निर्वाह करत से सहमति भेल अछि। सामाजिक संजाल मार्फत धार्मिक जातीय व सामुदायिक सद्भाव बिगाड़क के उद्देश्य सँ सामग्री प्रकाशन व प्रसारण करय वाला व्यक्ति पर मुलुकी अपराध संहिता 2074 विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कार्रवाई कयल जेबाक निर्णय सेहो बैठक कयलक अछि। एना कोनो प्रकार के शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन के कार्यक्रम संचालन करय से पहिने स्थानीय प्रशासन से पूर्व स्वीकृति लेबाक निर्णय कयल गेल। धनुषा के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी भूदेव झा एहि के जानकारी देलनि अछि। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल प्रतिनिधि सभा के बैठक के थप प्रभावकारी मर्यादित आ परिणाम मुखी बनेबाक उद्देश्य के संग विभिन्न राजनीतिक दल के शीर्ष नेता सब संग परामर्श भ रहल अछि। सभामुख आर्याल प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह तथा नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता राम बहादुर थापा संग अलगे अलगे भेंटवार्ता कयलनि अछि। एहिना कऽ ओ विपक्षी दल के नेता भीष्मराज आंगदेम्बी तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बर्खमान पुन संग सेहो अलगे अलगे भेंटवार्ता कयलनि अछि।
भेटक्रममै प्रतिनिधि सभाके आवला बैठकमै कार्यसूचीके व्यवस्थित ढङ्गसँ आगू बढेबाक आ सदनके कार्य सञ्चालनके थप प्रभावकारी बनेबाक विषयमे गहन विचार आदान प्रदान भेल अछि। एहिबीच सभामुख कार्याल विभिन्न राजनीतिक दलके प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सङ्ग सेहो अलगे विचार विमर्श कयलनि अछि। विचार विमर्शमे संसदीय गतिविधिके मर्यादित आ नतीजामुखी बनाबय, सभ दलके सहयोग आ समन्वय आवश्यक रहल विषयपर जोर देलनि अछि। चिकित्सा शिक्षा आयोग चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 के लेल 6,55,25,98,000 बरोबरी कार्यक्रम तथा बजट स्वीकृत कयलक अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के अध्यक्षता में आई प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में बैसल आयोग की 27वीं बैठक से नेपाल सरकार से विनियोजित 5,99,21,00,000 आयोग के आंतरिक स्रोत दिस 56,04,98,000 बरोबरी कार्यक्रम तथा बजट स्वीकृत कने आयोग के सूचना अधिकारी अर्जुन ढकाल के जानकारी दिलन। बैठक से अगत आर्थिक वर्ष 2082-83 के अखार मासांत धर आयोग के आंतरिक स्रोत में बचत रहल 99,85,96,276 आ चालू आर्थिक वर्ष में विभिन्न आंतरिक स्रोत से प्राप्त होबय वाला अनुमानित 33 करोड़ कक जमा 1,34,85,96,267 मध्य चालू आर्थिक वर्ष के लिए 56,04,98,000 खर्च करवाक निर्णय कयलक अछि। स्वीकृत बजट मध्य आंतरिक स्रोत से चालू दिस 47,42,98,000 आ पूंजीगत दिस 8,62,00,000 विनियोजन कयल गेल ढकान के कहब छन। बैठक में शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरिल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता, आयोग के उपाध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर देवेंद्र बहादुर खत्री तथा आयोग के सदस्य सचिव एवं सहसचिव बसंत प्रसाद कोरेला लगायत की सहभागिता छल। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले सुनसरी के देवानगंज घटना के समाधान करबाक लेल प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह पहल कदमी लऽ रहल जानकारी देलनि अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने द्वारा आइ सिंह दरबार में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सरकार के दिशा धारणा रखैत ओ सुनसरी में उत्पन्न परिस्थिति के समाधान करबाक लेल प्रधानमंत्री गंभीर छथि आ पहल कदमी लऽ रहल छथि कहलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर वागले सुनसरी घटना के सामान्यीकरण करबाक लेल आ सुरक्षा व्यवस्था के प्रत्याभूति करबाक लेल सरकार आवश्यक समन्वय में प्रयत्न कऽ रहल सेहो राजनीतिक दल के शीर्ष नेता सब के बैठक में जानकारी करौलनि। सर्वदलीय बैठक में उठल इच्छा आ विभिन्न विषय के संदर्भ में प्रधानमंत्री के अवगत करेबाक जनवित ओ सबके सजिया प्रयत्न में समाधान तकबाक चाही पर जोर दिलनि। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मान बहादुर कार्की निर्वाचन प्रणाली सुधार करबाक लेल सरकार आ राजनीतिक दल के सहयोग जरूरी रहल बतौलनि अछि। सिंह दरबार स्थित समिति के आजुक बैठक में सांसद सब रखने जिज्ञासा के जवाब में ओ निर्वाचन प्रणाली सुधार करबाक लेल 3 तरह के सरकार आ राजनीतिक दल के सहयोग जरूरी भेल बतौलनि। ओ निर्वाचन आयोग के सफल हेबाक लेल सब दल सब आ सब तरह के सरकार से ओतबे सहयोग की अपेक्षा रहल चर्च करैत उजुरी के विषय में प्रक्रिया नै पहुँचाकर आयल रिट निवेदन भेला से दर्ता करबाक लेल अस्वीकार कने जानकारी करौलनि। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की निर्वाचन में पैसा आ शक्ति की कानूनी रूप में नियंत्रण कयला से राजनीतिक दल सरकार आ संचार माध्यम ककरो उपयोग कर नहीं हेबाक आ कानूनी रूप में कड़ाई के संग पालना हेबाक चाही पर जोर दैत आयोग अ प्रति प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की मतदान केन्द्र में मतगणना करित काल लागत सेहो कम हेबा से शीघ्र गणना होयत आ निर्वाचन सुधार के काज सेहो भेला से एहि दिस ध्यान देल जेबाक चाही। चर्च करैत निर्वाचन के दिन सवारी साधन सुरक्षा के कारण नै चलाब कहैत एहि संबंध में सेहो विचार विमर्श करबाक बतौलनि अछि। विदेश में बैसे वाला नेपाली के मतदान कर के आ हुनका सब के संख्या यकीन विधि केहन बनाब एहि विषय में वृहत गृह कार्य जरूरी भेल आ नोट चलवला आ वोट नै चलवला विषय गहन विचार विमर्श क के एहि पर जरूरी रहल ओ कहलनि। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की निर्वाचन के काज के स्वच्छ पारदर्शी आ विश्वसनीय तरीका से सम्पन्न होबा में पूर्ण रूप में काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करैत ओ बदर मत घटाब सबके मिलकर निर्वाचन शिक्षा अभियान चलेबाक चाही बतौलनि अछि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा नेपाल टेलीकॉम की सेवा पहुँच आ गुणस्तर सुधार के लिए देखल गेल समस्या तत्काल समाधान करबाक लेल संभव भेल दे टेलीकॉम के सब टावर में भरोसगर विद्युतीय प्रणाली जरान करबाक लेल संबंधित निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय के लिए
निर्देशन देलने छ। संचार मन्त्रालयमै आयोजित अन्तर्निकाय विचार विमर्शमै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयकी प्रमुख राजन ढकाल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल लगायत पदाधिकारी सबकी उपस्थिति रहल छल। आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ईरान अमेरिका संग तत्काल कोनो वार्ता के योजना नै रहल स्पष्ट करैत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वार्ता सम्बन्धी दावी अस्वीकार कयलक अछि। ईरानी उप विदेश मन्त्री काजिम घरीबाबादी तेहरान अपन शर्त में मात्र कूटनीतिक प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक बतबैत अमेरिका युद्ध आ वार्ता के समय स्वयं निर्धारण कर नै सकबाक धारणा व्यक्त कयलनि अछि। राज्य संचालित टेलीविजन संख्या अन्तर्वार्ता में ओमान के मध्यस्थता में चरणबद्ध विचार विमर्श जारी रहल बावजूदो अमेरिका संग प्रत्यक्ष वार्ता के कोनो योजना नै रहल स्पष्ट कयलनि। हुनक हिसाबे अमेरिका अपना जरूरी रहल समय सैन्य कार्यवाही करबाक आ अपना इच्छा से समय समय में वार्ता कर के अभ्यास के ईरान स्वीकार नै करत। बरु द्वंद अंत के लिए पहल अमेरिके के दिस से भेल आ वाशिंगटन विभिन्न संदेश पठौने उ दावी कलन। वही प्रतिक्रिया राष्ट्रपति ट्रंप किछ दिन पहिने ही ईरान सैन्य कार्यवाही रोक आग्रह केन्द्रित वार्ता के प्रस्ताव केने दावी कलाक बाद आल। ट्रंप नया युद्ध विराम समझौता होब नहीं सकला पर सैन्य आक्रमण पुनः शुरू हो सकबाक चेतावनी देने छले। घरीबाबादी हरमूज जल घाटी संबंधी ईरान के अडान दोहराबैत वैकल्पिक दक्षिणी समुद्री मार्ग के मान्यता नहीं देबाक आ जल मार्ग में कायल जाय वाला सब सुरक्षा संबंधी तथा खानी हटाव वाला गतिविधि तेहरान के नियंत्रण में रहत से बतौने छले। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवा से सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुनसरी के दीवानगंज घटना पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति के आह्वान पर सर्वदलीय बैठक। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की सभी दलों की अपील। विभिन्न 9 विधेयकों को संघीय संसद में पेश करने के लिए सरकार की मंजूरी। कपिलवस्तु में ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की मौत, जबकि बांके में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान 3 लोगों की हुई मौत। और अमेरिका के साथ तत्काल किसी वार्ता की कोई योजना नहीं है, ईरान द्वारा स्पष्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सुनसरी में हाल ही में हुई घटना और उसके बाद उत्पन्न शांति एवं सुरक्षा की स्थिति को लेकर सुरक्षा निकायों के प्रमुखों से विस्तृत जानकारी ली है। गृहमंत्री सुधन गुरुंग की उपस्थिति में प्रधानमंत्री शाह ने नेपाल पुलिस के IGP दान बहादुर कार्की तथा सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के IGP नारायण दत्त पौडेल से अलग अलग मुलाकात कर सुनसरी की ताजा स्थिति, सुरक्षा चुनौतियों और संभावित जोखिमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री शाह ने सुनसरी की स्थिति पर तत्काल नियंत्रण स्थापित करने, आम नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री शाह ने शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता न करने तथा गृह मंत्रालय के अधीन दोनों सुरक्षा निकायों को उच्च सतर्कता के साथ तैनात रखने के भी निर्देश दिए। सुनसरी के दीवानगंज की घटना पर चर्चा के लिए आज आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दल सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एकजुट होकर काम करने पर सहमत हुए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने के आह्वान पर सिंह दरबार में हुई बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की स्थिति पैदा हो तब सभी दलों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने देने के लिए सभी दलों का एकमत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी ओर से काम कर रही है और ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक दलों के एकजुट होने की परंपरा रही है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को पार्टी का वरिष्ठ नेता मनोनीत किया है। आज आयोजित केंद्रीय समिति की बैठक में पार्टी विधान के प्रावधानों के अनुसार सभापति रवि लामिछाने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री शाह को वरिष्ठ नेता नियुक्त करने का निर्णय किया। ये जानकारी पार्टी के महासचिव विपिन कुमार आचार्य ने दी। इसी तरह बैठक ने कई अन्य निर्णय भी किए। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की की अध्यक्षता में आज आयोजित सर्वदलीय बैठक ने गत रविवार रात सुनसरी के दीवानगंज में हुई घटना के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सद्भाव तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्णय किया। बैठक ने स्थानीय निकाय पर सर्वदलीय बैठकें आयोजित कर सामाजिक सद्भाव से जुड़े कार्यक्रम संचालित करने सहित 8 सूत्रीय निर्णय भी किए। बैठक में कोशी प्रदेश सरकार ने सुनसरी के दीवानगंज घटना में मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने का निर्णय किया है। इसके अलावा आगजनी से घर, दुकान एवं अन्य संपत्ति क्षतिग्रस्त होने वाले परिवारों तथा घायलों को प्रति परिवार 50,000 रुपए की राहत दी जाएगी। बैठक ने घटना में जान गंवाने वाले ओम प्रकाश मेहता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सरकार ने विभिन्न 9 विधेयकों को संघीय संसद समक्ष पेश करने की स्वीकृति देने का निर्णय किया है। सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने संवैधानिक निकायों के पदाधिकारियों की पारिश्रमिक, सेवा शर्त और सुविधा संबंधी आयन 2053 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ संबंधी कानून को संशोधन करने और एकीकरण करने के लिए बने विधेयक, संक्रामक पशु रोग नियंत्रण संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक और राहदानी आयन 2076 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश करने की स्वीकृति देने का निर्णय किया है। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। साथ ही बैठक ने मानव बीज विखंड तथा उसार पोसार नियंत्रण प्रथम संशोधन विधेयक, बाल श्रम निषेध तथा नियमित करने संबंधी विधेयक, आंतरिक वायु सेवा का दायित्व संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक, मेल मिलाप संबंधी आयन 2068 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक और कर्मचारी संचय कोष आयन 2019 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक भी संसद में पेश करने की स्वीकृति देने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग के महानिर्देशक वनीज द्वारा तय किए गए अधिकृत को विदेश विनियमन संबंधी कसूर का अनुसंधान अधिकारी तय करने का निर्णय किया है। ये जानकारी मंत्री पोखरेल ने दी। इसी तरह समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति के सदस्य पद पर सिंधुली के खेतराज दहाल सिंधुली को मनोनयन करने का निर्णय किया है। बैठक ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद 6 संशोधन नियमावली 2083 समेत स्वीकृत किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज सभामुख डीपी अर्याल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि सभा की कार्रवाई को अधिक प्रभावी और परिणाम उन्मुख बनाने के विषय पर चर्चा हुई। सभामुख अर्याल ने आज ही निकोबार माले के संसदीय दल के नेता राम बहादुर थापा से भी भेंट की। इससे पहले मंगलवार को सभामुख अर्याल ने विपक्ष के नेता विस्मराज आंगदेम्बे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वर्षमान पुन तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ अलग अलग बैठकें की थी। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने नेपाल टेलीकॉम की सेवा पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए सामने आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान करने तथा टेलीकॉम के सभी टावरों तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज सूचना तथा संचार मंत्रालय में आयोजित अंतर निकाय बैठक में मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि टेलीकॉम टावरों तक विद्युत पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नेपाल टेलीकॉम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और वैकल्पिक ऊर्जा प्रोत्साहन केन्द्र के बीच स्थायी समन्वय तंत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक कार्यदल गठित कर स्पष्ट कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने के भी निर्देश दिए। उन्होंने दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन तथा हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष की राशि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का भी संबंधित निकायों को निर्देश किया। संसदीय सुनवाई समिति ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के पद के लिए मान बहादुर कार्की तथा निर्वाचन आयुक्तों के पद के लिए गुरु वागले और डॉ. राजीव सुब्बा के नामों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया है। सिंह दरबार में आज आयोजित समिति की बैठक में प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मान बहादुर कार्की तथा निर्वाचन आयुक्तों के लिए गुरु वागले और डॉ. राजीव सुब्बा के नामों को मंजूरी दी गई। ये जानकारी समिति के अध्यक्ष बोध नारायण श्रेष्ठ ने दी। कपिलवस्तु के महाराजगंज नगर पालिका वार्ड नंबर 2 स्थित गैड हवा में आज एक ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बहादुरगंज से तौली हवा जा रहे एक ट्रक ने मोटरसाइकिल, एक पैदल यात्री और एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक 12 वर्षीय बालक सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिला पुलिस कार्यालय कपिलवस्तु के अनुसार मृतकों की पहचान स्थानीय निवासी 12 वर्षीय आनंद कश्यप, महाराजगंज नगर पालिका 3 के 75 वर्षीय भोलर कुर्मी और 45 वर्षीय विजय कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। बांके जिले के कोहलपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 स्थित शांति टोल में निर्माणाधीन एक घर के सेफ्टी टैंक में फंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इलाका पुलिस कार्यालय कोहलपुर के अनुसार दया प्रसाद थारू के निर्माणाधीन मकान के आंगन में बनाए जा रहे सेफ्टी टैंक में आज सुबह करीब 9 बजे कोहलपुर 3 निवासी लगभग 42 वर्षीय कालू थारू, 27 वर्षीय प्रकाश थारू और 34 वर्षीय विरजा थारू फंस गए। तीनों मजदूरों के सेफ्टी टैंक में फंसे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें मृत अवस्था में बाहर निकाला। तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेरी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी स्तर की वार्ता की कोई तत्काल योजना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच निकट भविष्य में किसी बैठक का कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। उन्होंने उन खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दोनों देशों के बीच जल्द बातचीत होने का दावा किया जा रहा था। प्रवक्ता बकाई ने कहा कि ईरान कूटनीति को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम मानता है, लेकिन किसी भी संभावित वार्ता के लिए अमेरिका को पहले अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। उनके अनुसार ईरान पर लगाए गए दबाव और अमेरिकी नीतियों ने दोनों देशों के बीच विश्वास को कमजोर किया है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुनसरी के दीवानगंज घटना पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति के आह्वान पर सर्वदलीय बैठक, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की सभी दलों की अपील। विभिन्न 9 विधेयकों को संघीय संसद में पेश करने के लिए सरकार की मंजूरी। कपिलवस्तु में ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की मौत, जबकि बांके में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान 3 लोगों की हुई मौत। और अमेरिका के साथ तत्काल किसी वार्ता की कोई योजना नहीं है, ईरान द्वारा स्पष्ट। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: फोर्जी LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
5: झण्डु आयुर्वेद,
6: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
5: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
6: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
5: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
6: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
7: कुनै पनि कारणले उत्पन्न हुने हिंसात्मक घटनाले जनधनको क्षति मात्र होइन, समाजमा वर्षौंदेखि कायम रहेको विश्वास, भाइचारा र सद्भावमा समेत गहिरो चोट पुर्याउँछ। संयमता, धैर्यता र जिम्मेवार नागरिकको व्यवहार नै सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो।
8: अशान्ति फैलाउने प्रयास प्राय अफवाह, भ्रामक सूचना र उत्तेजक अभिव्यक्तिबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि समाचार, फोटो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देख्दैमा त्यसलाई सत्य ठान्नु हुँदैन। आधिकारिक निकाय वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट पुष्टि नगरी कुनै पनि सामग्री सेयर नगर्नुहोस्। जात, धर्म, भाषा र समुदायका नाममा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र उत्तेजक टिप्पणीबाट टाढा रहनुहोस्। याद राखौँ, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एउटा गैर जिम्मेवार पोस्टले समाजमा ठूलो तनाव सिर्जना गर्न सक्छ भने एउटा जिम्मेवार व्यवहारले शान्ति कायम राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
7: कुनै विवाद वा समस्या देखिएमा सम्बन्धित निकाय, स्थानीय प्रशासन वा समुदायका अगुवासँग समन्वय गरी शान्तिपूर्ण संवादबाट समाधान खोजौँ।
8: सार्वजनिक सेवा प्रसारण, रेडियो नेपालको अनुरोध।